शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

ईश्वर मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं।

इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप?
1: जिंदगी जीने के तीन नियम। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम ताउम्र सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नाराज ही छूट जाते हैं। अब बताइए, क्या जरूरत है सबको खुश करने की? जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने पर हम स्वयं ही हमारे लिए ही तालियां बजाने लग जाते हैं, बताइए। नियम नंबर दो, सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है भैया, जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस करके दे दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन को कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख सकते हैं। समझदार व्यक्ति कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते ही रहते हैं। नियम नंबर तीन, हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकता रहता है। गौर कीजिए, इसी डर के कारण हम चुनौतियों से भागते हैं, बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूत तो होना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपना दिल और दिमाग किसी काम के पीछे लगा दें, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ना। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दोस्तों हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको देखने की जरूरत है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही हंसना सिखाने वाले भाई से जो मोटिवेशन के जिंदा मिसाल हैं। इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाइयों ने अहमद की योजनाओं को भी खाक कर दिया। 5 दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर अहमद ऐसी स्थितियों में पहले भी गुजर चुके थे। सो पहुंच गए नजदीकी स्कूल में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शायर निदा फाजली से गाजा के अहमद अलगरजी की शायद ही कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन लगता है उन्होंने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया है। बम के धमाकों से दहलती हुई गाजा पट्टी में वो बच्चों में खुशी बांट रहे हैं, उन्हें जीने के गुर सिखा रहे हैं, डर से पार पाने की ताकत दे रहे हैं और दिमागी तौर पर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। और ये सब वो कर रहे हैं नृत्य के अपने हुनर और नर्सिंग की तालीम की मदद से। जी हां, वो एक शानदार डांसर हैं। संभवतः इसी कारण द गार्जियन उनमें द इंस्पायरिंग पीपल बनने की संभावनाएं देख रहा है। अहमद के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। गाजा के ही कई शिविरों में उनका बचपन बीता था। अपने भाई से उन्होंने ब्रेक डांस सीखा जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उनके भाई सऊदी अरब में इस डांस से दिल लगा बैठे थे और वापस लौटने पर उन्होंने अहमद को भी ब्रेक डांस सिखाया। अहमद ने भी खुशी खुशी इसे सर माथे लिया। कमरे में, गलियों में, जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलती वो नाचने लगते। इस जुनून ने उनके कई नए दोस्त बना दिए जो पराधीन गाजा में आजादी महसूस करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर क्या था, 2004 में कैंप्स ब्रेकेज की नींव रख दी गई। इसमें करीब 10 डांसर्स थे। इस ग्रुप का मकसद साफ था, खुद को अभिव्यक्त करना, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का विरोध करने और उन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए नाचना जिनसे वे खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। अहमद को ब्रेक डांस से इतना प्यार हो गया कि नर्सिंग से स्नातक करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ने की नहीं सोची। हालांकि यही पढ़ाई बाद में उनकी हमराह बनेगी, ऐसा भी उन्होंने कहां सोचा होगा। कोई भी संकीर्ण समाज ऐसे किसी शुरुआत को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अहमद ने तो खूब ताने सुने, पर वो जानते थे कि डांस से भी मंजिल पाई जा सकती है। वो गुर्बत में जी रहे लोगों का गम बांटना चाहते थे, खुली जेल बन चुके गाजा को जीने का सलीका सिखाना चाहते थे। इसमें साल 2009 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी टीम को सेव द चिल्ड्रन के साथ एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जो ऑपरेशन कास्ट लीड के पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि साल 2008-2009 में इसराइल द्वारा गाजा में किए गए इस सैन्य ऑपरेशन में 333 बच्चों सहित 1383 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अहमद समझ गए कि धमाकों से दहले बचपन को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। उनका समूह नृत्य के माध्यम से फिलिस्तीनी समाज में मौजूद भेदभाव को मिटाने, उनमें एकता बढ़ाने, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया। गाजा पट्टी पर आयद इजरायली बंदिशों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाने लगा। कहा जाता है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर उनके डांस सेंटर को भी बम से उड़ा दिया गया। पर तब तक अहमद इतने प्रशंसक कमा चुके थे कि उनकी एक आवाज पर $10,000 की रकम जुटा ली गई और साल 2012 में एक नया डांस सेंटर बनकर खड़ा हो गया। गाजा में मुश्किलें बढ़ने के बाद अहमद 2015 में जर्मनी चले गए, पर उनका दिल मातृभूमि में ही अटका रहा। इसी कारण कई बार वो वापस लौट आते और नई प्रतिभाओं को नृत्य सिखाते। अक्टूबर 2023 में भी इसी मकसद से वो गाजा आए थे। वहां युवा नर्तकों का एक शो था, मगर इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाई ने उनकी योजनाओं को खाक कर दिया। फर्ज कीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको पता चलता है कि अनिश्चितकालीन जंग में घिर जाने के कारण अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ध्वंस भी इस कदर कि कौन सी मिसाइल कहां धमाका कर जाए कोई नहीं जानता, तब आप क्या करेंगे। अहमद के सामने भी यही सवाल था।
पांच दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर ज्यादा दिनों तक बैठे रहना भी अहमद को मंजूर नहीं था। वो इस तरह के हालात से पहले भी गुजर चुके थे, तो वो पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक नजदीकी स्कूल में। वहां बच्चों के लिए कार्यशालाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। शुरुआत में बच्चे झिझके जरूर, लेकिन जल्द ही अहमद और उनके साथियों के फ्लिप और ट्विस्ट पर भी वो नाचने लगे। अब तो अहमद इन बच्चों के भाई हैं, हालांकि उन्हें अपने शुरुआती नाम शार्क यानी कि उस्ताद ही पसंद है। आज अहमद हर जगह जाते हैं जहां गाजा नागरिक शरण लिए हुए हैं और बच्चों के लिए डांस करते हैं। वो और उनके दोस्त पूरी कोशिश करते हैं कि यहां के मासूमों में मासूमियत बची रहे। यहां तक कि नजदीक गिरे मिसाइल से अपने एक छात्र की मौत के बाद भी अहमद के कदम रुके नहीं हैं। आखिर उन्हें डर क्यों नहीं लगता? एक साक्षात्कार में अहमद ने बताया कि मैंने भी बचपन में ये सब देखा है। बम धमाके से कोई बच्चा कितना भयभीत हो जाता है, ये मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी ये सब झेले। अब तो हर धमाके के बाद मैं खुद को कहीं अधिक मजबूत महसूस करता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, गाजा जैसी मुसीबत में भरी हुई जगह में भी अहमद जैसा इंसान सिर्फ डांस करके पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और प्रेरणा का संदेश फैला रहा है। क्या दोस्तों हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें। दोस्तों ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

0: देश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं।
1: कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत काटकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी के गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न है। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मात्र भक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।
0: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गली नंबर 9, जहां पपीज गॉसिप करते हैं, चिक्स फैशन शो करती हैं, और लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक छुट्टी पे होता है और हैप्पीनेस फुल ड्यूटी पर। सीन 1, शहर के कोने में एक सीक्रेट जगह। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो गूगल मैप्स पे नहीं मिलती, ना उसका एड्रेस क्लियर होता है, ना उसका लॉजिक, पर फिर भी कुछ लोग गलती से वहां पहुंच ही जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो थोड़े बदल जाते हैं। आज की कहानी है गली नंबर 9 की, एक पापा की बेचैनी। शाम का वक्त,

ट्रैफिक, हॉर्न्स, नॉर्मल सिटी का क्योस। राजीव ऑफिस से घर लौट रहा है, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा स्ट्रेस्ड। दरवाजा खोलता है। आन्या बेटा, मैं आ गया, कहाँ हो आप? और एकदम साइलेंस। वो मुस्कुराता है। छुप गई क्या? कहाँ गई मेरी आन्या? पर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, साइलेंस सेम रहता है। उसकी हार्टबीट तेज होने लगती है। घर चेक करता है, बालकनी, बेडरूम, किचन, प्ले रूम, आन्या कहीं नहीं। अब वो सिर्फ फादर नहीं है, वो एक डर से भरा हुआ इंसान है। पैनिक हो जाता है। फोन कॉल्स, नेबर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, और सबका जवाब, आन्या को नहीं देखा। राजीव के दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे हैं। किडनैपिंग, एक्सीडेंट, और फिर एक अजीब सी इंट्यूशन उसे ले जाती है गली नंबर 9 की तरफ। जैसे ही वो गली में एंटर करता है, आवाजें धीरी हो जाती हैं, ट्रैफिक की नॉइज गायब, हवा थोड़ी सी हल्की लगती है, और एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब बट पीसफुल। राजीव रुकता है, सोचता है, ये जगह पहले कभी नहीं देखी, नहीं, पर फिर भी जैसे ये जगह उसे जानती हो, पहचानती हो और उससे बात कर रही हो। थोड़ा सा आगे बढ़ता है और राजीव फ्रीज हो जाता है। जमीन पर आन्या बैठी है और उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा पपी, बिल्कुल आन्या के ही साइज का। पर ये नॉर्मल सीन नहीं है। पपी नॉनस्टॉप भौंक रहा है एक्सप्रेसिव टोन में और आन्या फुल कंसंट्रेशन के साथ बोल रही है, फिर उसने क्या बोला? राजीव का ब्रेन, ये तो इंटरव्यू चल रहा है। राजीव धीरे से पास आता है। आन्या, बेटा आन्या, पापा इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। और पपी, भाव भाव, ट्रांसलेशन स्पॉइलर मत दो। राजीव, आई थिंक मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। तभी आसमान बदलता है और बारिश शुरू। राजीव सोचता है, चलो अब घर। पर नहीं, गली नंबर 9 में स्टोरी अभी भी वार्म अप पे है। दूर से एक आदमी आता है और उसके पीछे 3 टाइनी चिक्स। पर ट्विस्ट क्या है जानते हैं? सबने कलरफुल मिनी रेनकोट्स पहने हैं, रेड, ब्लू, येलो, सब अलग कलर्स, जैसे रेनबो चला रहा हो चिक्स का। चिक्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक मोड ऑन में। राजीव मन में सोचता है, ये फैशन वीक है क्या? और वो आदमी चिक मॉनसून कलेक्शन 2026 लॉन्च करता हुआ। आन्या क्लैप करती है, पापा देखो कितने क्यूट हैं। और पपी जेलस, ट्रांसलेशन, मुझे भी आउटफिट चाहिए। रियलिटी ऑफिशियली ब्रेक होती है। राजीव खुद से, मैं सपना देख रहा हूं या ये सच्चाई है? आन्या, पापा रिलैक्स, यहां सब नॉर्मल है। और तब स्लो मोशन में एंट्री होती है एक टाइनी ची हुआ हुआ डॉगी की। नाम प्रिंसेस लोलो। सनग्लासेस, स्टाइलिश वॉक, पीछे 2 लोग, कैमरा रेडी, रील शूटिंग चल रही है, म्यूजिक इमेजिनरी बज रहा है। लोलो पोज देती है, हेड टिल्ट, स्लो ब्लिंक, कैप्शन रेडी, रेन वाइब्स ओनली। और राजीव सोचता है, बस अब मैं गिव अप करता हूं। राजीव धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, एक बच्ची पपी के साथ बात कर रही है, चिक्स रेनकोट में खुश हैं और ची हुआ हुआ अपनी लाइफ जी रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, ना EMI, ना डेडलाइंस, ना SIP, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट। राजीव के दिमाग में एक थॉट आता है, मैं कब इतना सीरियस हो गया? मैं कब लास्ट बार बिना रीजन के हंसा था? मैंने कब सिर्फ रुक के कुछ
कुछ फील किया और उस मोमेंट में गली नंबर 9 से आंसर आता है। राजीव आन्या के पास बैठता है। आन्या बेटा, मैं भी सुन सकता हूँ पापी की स्टोरी? आन्या स्माइल करती है और बोलती है, ऑफ कोर्स पापा। पापी, बाव, ट्रांसलेशन, मेंबरशिप अप्रूव्ड। और उस मोमेंट में राजीव सिर्फ फादर नहीं रहता, वो फिर से एक बच्चा बन जाता है। बारिश रुकती है, लाइट्स नॉर्मल होती हैं। राजीव और आन्या घर की तरफ चल देते हैं। राजीव पीछे मुड़ के देखता है, गली नंबर 9 जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, गली नंबर 9 कोई जगह नहीं है, एक फीलिंग है जहां आप थोड़ा फ्लो हो जाते हो, थोड़ा ड्रीम करते हो, थोड़ा इमेजिन करते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो और थोड़ा रियलाइज करते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितनी हम बना देते हैं। अगर आपको कभी गली नंबर 9 मिल जाए तो क्या आप रुकोगे या फिर जल्दी में इग्नोर कर दोगे? मैं हूं आपकी दोस्त, थोड़ा सा बचपन बचा के रखिए, थोड़ा पागलपन जिंदा रखिए, क्योंकि लाइफ का असली मजा वही है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: सिलेक्टिव मेमोरी वाला दोस्त, अपनी गलती कुछ याद नहीं, और आपकी गलती डेट, टाइम, लोकेशन, कपड़े सब याद, जैसे मेमोरी नहीं कोई हाईलाइट फीचर हो गया हो।

मॉर्गन मफल, सुबह का शैतान या स्लीपर लेजेंड। नमस्कार दोस्तों, आज का फनी वर्ड है थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा फनी और थोड़ा डेंजरस भी। मॉर्गन मफल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जर्मन विलन हो। मैं हूँ मॉर्गन मफल और मैं सुबह को बर्बाद करने आया हूँ। पर इसका असली मतलब बहुत सिंपल है, वो इंसान जो सुबह उठते ही दुनिया से थोड़ा नाराज होता है। मतलब अलार्म बजते ही, क्यों सनलाइट आते ही बंद करो ये ब्राइटनेस, और कोई गुड मॉर्निंग बोल दे तो जवाब मिलता है नॉट गुड। चलिए कहानी सुनते हैं। एक शहर था, नाम था नींद नगर। जी हाँ, नींद नगर। इस शहर में दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे मॉर्निंग लवर्स और दूसरे थे मॉर्गन मफल्स। मॉर्निंग लवर्स 5 बजे उठ जाते, योगा, वॉक, सनराइज सेल्फी, सूर्य नमस्कार। और मॉर्गन मफल्स, उनके लिए सुबह एक कॉन्स्पिरेसी थी। इस शहर में रहता था राघव, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन सर्टिफाइड मॉर्गन मफल। अलार्म बजता 5 मिनट और 5 मिनट के बाद और 5, और फिर ऑफिस के लिए लेट। राघव का एक ही रूल था, सुबह बिना कॉफी के मैं इंसान नहीं हूं। उसकी मम्मी, बेटा गुड मॉर्निंग, और राघव, कॉफी दो पहले। उसकी दोस्त नैना, तू इतना इरिटेटेड क्यों रहता है सुबह सुबह? राघव, मैं इरिटेटेड नहीं हूं, मैं मॉर्गन मफल हूं। एक दिन ऑफिस में एक चैलेंज अनाउंस होता है, अर्ली बर्ड वीक। जो 7 दिन तक सुबह 6 बजे ऑफिस आएगा उसे मिलेगा बोनस। राघव सोचता है ये तो इंसल्ट हो गई भाई, और नैना, ट्राई कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। राघव बोलता है, सुबह 6 बजे तो मेरी सोल भी ऑफलाइन होती है। नेक्स्ट डे अलार्म सुबह 5:30 बजे पे सेट। अलार्म बजता है, राघव आंख खोलता है और सीधा अलार्म बंद कर देता है। नाइस ट्राई। डे 2, उठने की कोशिश। डे 3, कॉफी गिर गई। डे 4, ऑफिस गया पर बिना बात किए। बॉस कहते हैं, गुड मॉर्निंग राघव, और राघव ओनली ग्लेज, सिर्फ घूरता है। डे 5, राघव सुबह उठ तो जाता है, बाहर भी जाता है और पहली बार सनराइज देखता है। लाइट धीरे धीरे फैल रही है, बर्ड्स की आवाज, हवा ठंडी, और राघव रुक जाता है। क्या ये रोज होता है? नैना हंसती है, हाँ बट तू तो सोता रहता है। उस मोमेंट में राघव को समझ आता है, सुबह प्रॉब्लम नहीं है, उसका कनेक्शन मिसिंग था। पर अगले दिन फिर अलार्म बजता है, राघव फिर से, बस 5 मिनट और। नैना कहती है, तू चेंज नहीं होगा। राघव बोलता है, मैं इम्प्रूव तो हो रहा हूं, कंप्लीटली चेंज होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, हर इंसान का एक वर्जन होता है, कोई मॉर्निंग लवर, कोई नाइट आउल और कोई मॉर्गन मफल, और ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने वर्जन को समझकर उसे थोड़ा बेटर बना सके। तो अगर आप भी सुबह उठ के थोड़ा ग्रंपी फील करते हो, अगर आपको भी पहले कॉफी चाहिए और फिर कॉन्वर्सेशन, तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो, आप हो मॉर्गन मफल्स की टीम का एक हिस्सा। आप कौन सा टाइप हो ये जरूर बताना मुझे, मॉर्निंग लवर, नाइट आउल या फुल ऑन मॉर्गन मफल। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी कॉफी स्ट्रॉन्ग है या वीक? मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, सुबह चाहे जितनी ही मुश्किल हो, एक कप कॉफी और थोड़ी सी मुस्कान सब कुछ ठीक कर देती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: गुड मॉर्निंग विद फ्लावर इमोजी एंड अ सनराइज इमोजी। सुबह 6 बजे ही इतने फ्लावर्स भेज देते हैं लोग कि लगता है फोन में ही गार्डन उग गया।

सिलेनोफिल, वो चांद जो सिर्फ देखता नहीं महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड थोड़ा मुश्किल है पर फीलिंग बहुत सिंपल है। वर्ड है सिलेनोफिल, मतलब वो इंसान जो चांद से प्यार करता है। पर दोस्तों, क्या चांद से प्यार करना इतना सिंपल होता है या उसके पीछे कोई कहानी होती है? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ चांद को देखता नहीं चांद में जीता था। आरफ, थोड़ा अजीब थोड़ा अलग। एक शहर था नॉर्मल सा, रश ट्रैफिक लोग बिजी, और उस शहर की एक बिल्डिंग की छत पर रोज रात को एक लड़का बैठता था, नाम था आरफ। अब आरफ थोड़ा अलग था, जहां लोग रात को रील्स देखते थे आरव आसमान को देखता था, जहां लोग गुड नाइट मैसेज भेजते थे आरव चांद को गुड नाइट करता था। हेलो चांद, आज तुम थोड़े ज्यादा ब्राइट लग रहे हो, कभी कभी थोड़ा साइड हो जाओ, स्टार्स को भी चांस दो। कॉलोनी के लोग कहते थे ये लड़का थोड़ा फिल्मी है, दोस्त बोलते थे भाई तू गर्लफ्रेंड बना ले, चांद से बात करने से तो बेटर है। आरफ हंसता था, गर्लफ्रेंड ऑनलाइन होगी या नहीं पता नहीं, चांद तो रोज आता है। कनेक्शन डीपर था और हम सोच भी नहीं सकते, पर सच ये था आरफ का चांद से कनेक्शन फन नहीं था, वो पर्सनल था। बचपन में उसकी माँ उसे सुलाते हुए कहती थी, आरफ चांद देखा, वो सिर्फ एक गोला नहीं है, वो एक दोस्त है। जब भी तुम अकेला फील करो बस उसे याद कर लेना, उससे बात कर लेना। और फिर एक दिन माँ चली गई, तब से आरफ के लिए चांद सिर्फ चांद नहीं रहा, वो एक कनेक्शन बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक रात आसमान बदल गया, गहरे बादल, कोई रोशनी नहीं, चांद गायब। आरफ छत पर गया और रुक गया, चांद एकदम साइलेंस। फिर उसने देखा, उसने फिर देखा, फिर से और फिर से, पर कुछ नहीं। उस रात आरफ को रियलाइज हुआ आदत भी कभी कभी जरूरत बन जाती है। तभी हल्की सी एक आवाज, तुम उसे ढूंढ रहे हो? आरफ पलट के देखता है, एक लड़की खड़ी है, सिंपल वाइट ड्रेस, आंखों में एक अजीब सा काम। आरफ पूछता है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मैं उसकी तरफ से आई हूं। आरफ बोलता है, उसकी तरफ मतलब चांद की? लड़की कहती है, हाँ आज वो थोड़ा बिजी है। आरफ कहता है, बिजी? चांद भी कभी बिजी होता है? लड़की बोलती है, अरे भाई इतने लोग उसे देखते हैं, थोड़ा वर्कलोड तो होगा ना। आरफ हल्का सा हंसता है पर फिर सीरियस, पर वो आज दिख क्यों नहीं रहा? लड़की आसमान की तरफ देखती है, चांद हमेशा होता है, बस कभी कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, जैसे फीलिंग्स, जैसे यादें, जैसे वो लोग जो चले जाते हैं पर कहीं नहीं जाते। आरफ चुप हो जाता है, लड़की मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें लगता है सिलेनोफिल का मतलब सिर्फ चांद से प्यार करना है? आरफ बोलता है, शायद। लड़की,

खूबसूरत सफेद, आज थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। आरफ स्माइल करता है, वो समझ गया आज वो सिर्फ चांद को नहीं देख रहा, वो उसे फील कर रहा है। दोस्तों, सेलेनोफिल होना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक नजरिया है। जहां आप अंधेरे से डरते नहीं, उसमें रोशनी ढूंढते हो। जहां आप अकेला फील करते हो पर अकेले होते नहीं। जहां आप ऊपर देखना नहीं भूलते। आज रात जब आप आसमान देखें, तो क्या आप सिर्फ चांद देखेंगे या उसमें किसी की याद, किसी की बात, किसी की मुस्कान और शायद थोड़ा सा खुद को भी। और अगली कहानी तक याद रखिए, चांद कभी गायब नहीं होता, बस कभी कभी हम देखना भूल जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: पासवर्ड रीसेट करने वाला इंसान, हर बार लॉगिन करो रॉन्ग पासवर्ड, रीसेट करो, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। भाई मैं ही हूँ, मुझे ही एंट्री नहीं दे रहे।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी यह ध्यान रखना चाहिए
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पोंछते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक

0: हैं। इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना, सोचिएगा।
1: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास,
हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। निजी दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
2: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
2: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
3: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूँ माँ।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी माँ, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाही ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर। सर ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: ओले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चल के देखता हूँ। अरे अरे अरे अरे अरे बच्चों, तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? चलो ठीक है, आप छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ,
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन?
5: सामान बेचता है।
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता
9: है। खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
6: प्लास,
2: कीले, पेचकस, आरी,
6: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
6: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
6: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसमें मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ
6: धम धम।
2: तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
7: बिल्कुल मुफ्त।
2: बिल्कुल वो
7: गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी सुना। हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई।
6: भैया ओ से औरत।
2: शाबाश, ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
12: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
6: भैया
4: ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
12: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले, और ओ से
4: औरत,
2: औरत, और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
13: अरे बेटा बेटा।
12: हाँ बाबा कहिए।
13: बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
2: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
4: दवाई।
2: दवाई, वाह क्या बात है। इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो, और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
6: हाँ भैया।
2: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा, बाबा जी ये दवा वहाँ सामने वाली दुकान पर मिलेगी। हाँ वहाँ जाइए आप।
13: अच्छा बेटा,
7: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
2: केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
2: तभी वहाँ पर दो आदमी आए। पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम। ओ से शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम,
7: वो चोरी कर रहे थे।
2: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे। ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते
13: ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दो दो,
2: और वो भी दो दो मूसल के साथ। हा?
6: हाँ,
2: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ,
7: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
2: हाँ,
7: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
2: बर्तन दे दो।
7: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
2: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
7: क्या हुआ भैया?
2: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते
12: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया, तुम्हारे पास सारी चीजें बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
2: बहुत बुरी बात है,
6: बहुत बुरी बात है, भी बुरी बात है।
2: तंग करना उससे भी बुरी बात है,
7: वो अच्छा नहीं कर रहे,
2: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
7: क्या हुआ भैया?
2: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो
7: से ओहो।
2: ओ से ओहो, शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई।
13: अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो? अरे
2: बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर। बहुत चोटें भी लगी होंगी
6: और उनको बहुत दर्द हुआ,
2: बहुत दर्द
7: हुआ, फट गया, वो घायल हो गए,
2: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
6: और भैया औंधे।
2: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
6: हाँ भैया,
2: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
7: पुलिस को फोन कर दिया।
2: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
2: बहुत बुरी बात है, सच
6: में बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
7: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए,
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल
6: हमें ईमानदार होना चाहिए,
2: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए,
7: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
2: नहीं करनी चाहिए,
6: बुरी बात होती है,
2: बहुत बुरी बात होती है, शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा,
7: और हथौड़े और कील और पेचकश और औजार बेचने लगा,
2: औजार बेचने लगा,
7: और ओढ़नी और चूड़ी,
2: ओढ़नी और चूड़ी
7: और साड़ी भी,
2: साड़ी भी, बर्तन
7: और पेच भी,
2: पेचकश भी, कपड़े
7: और आरी,
2: आरी, शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा
12: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
3: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
2: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ, ओ,
4: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ

0: कोई औषधि मिलती नहीं यहाँ।
1: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओमकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
2: लदे ओखली, दे मुसल, सारे औजार दे।
3: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
1: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
4: खूब हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा धड़ा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते।
4: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
5: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
4: हाँ, ये बात है।
6: अनंत, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
4: बढ़िया हो ना?
6: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
4: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
4: हाँ।
5: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा, अच्छा? बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे?
4: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था।
6: बहुत तेज।
4: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
7: 700 किलोग्राम?
4: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
5: 700 किलोग्राम?
4: हाँ।
5: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
4: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
6: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
4: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस

0: શું તારે હતા તા ઘોડે બેચકા
1: લેકિન બચ્ચો એ તો કહાવત હે ના ઘોડે બેચ કે સોના હે
2: ફિર ક્યા હુઆ
3: ફિર એક બાર જયજુ ઓર મન્નુ અપના મકાન બદલ રહે થે
4: વો ઘર કા સારા સામાન ઘોડા ગાડી મે લાદને લગે
0: ઓર ફિર જયજુ ઓર મન્નુ કે પિતાજી ને કહા
5: સબસે પહેલે इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
0: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
6: ये रहे 5 बोरी गेहूँ, इन्हें भी रख देती हूँ।
7: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा,
5: अरे बेटा, ले आ ले आ।
0: और घोड़ा कहने लगा,
7: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
5: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं।
4: और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
0: तब घोड़ा बोला,
7: अरे इतना भार।
4: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
0: और बच्चों, घोड़ा बोला,
7: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
2: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
4: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
0: जैजू मन्नू,
7: जी पिताजी,
8: जी पिताजी,
5: भाई लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
2: वो बहुत भारी हो गया था
9: क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था।
4: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
0: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
10: ठीक है।
0: तो 1 गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम। हाँ, और 1 चावल की बोरी और 1 अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
10: 105 किलोग्राम।
4: तो बच्चों बताओ, कुल कितना भार हुआ? 100 और 105 किलोग्राम?
10: 205।
0: 205 क्या?
10: ग्राम।
0: सिर्फ ग्राम?
10: किलोग्राम।
0: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। 1 कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
10: 5 किलोग्राम।
0: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
10: 205 किलोग्राम।
0: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ तो भाई, अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
10: कितना है?
0: 50 किलोग्राम।
10: 50 किलोग्राम।
0: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया, यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
10: 235 किलोग्राम।
0: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
10: 260 किलोग्राम।
0: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
10: 270 ग्राम।
0: किलोग्राम। शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम।
8: शाबाश।
3: और अब बारी आती है गद्दे की।
0: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
10: 290 किलोग्राम।
0: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
11: बहुत होशियार।
0: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
11: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ,
0: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
10: 300 किलोग्राम।
11: बिल्कुल ठीक बताया,
0: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना, तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
10: 310 किलोग्राम।
11: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
0: क्या बात है।
11: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
10: कम।
0: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
12: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
9: मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा,
13: मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
12: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
13: मम्मी को भी तो बिठाओ।
12: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ।
5: अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
12: चलो सब।
11: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
0: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
11: आज का सवाल।
0: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है। सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है। तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली। और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: टम्पोट।
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। खेती बाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
3: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप

को जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पे अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में, हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं, और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें, और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही है, कीवी के इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में तीन सेगमेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देखरेख इस वर्षा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का सफल किसान हो लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, और उस बदलाव से चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगनी हो रही है किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके. बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि. जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं. साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी. तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती के सारी में.
2: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो. ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं. कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है. लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है. एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना. इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूखकर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है. एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है. इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए. रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं. देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है. भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है.
3: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है. मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की. राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना. देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है. फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम. एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी, भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
2: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
3: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंग सरकीर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृतिक कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
2: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
4: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेषांक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत

0: भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेष अंक की निर्मित की गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील, आप रेडियो आपड़ी बातें।
1: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है, और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है पशुधन। और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए पशुपालन को लेकर, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
3: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजना के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या

0: सजावटी चीजें बनाने में कर रही है, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
1: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गया, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
0: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
0: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का

0: ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं, और कितनी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान पशुधन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं, और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट, जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
1: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
1: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी जीआई टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है। यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेती बाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
3: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहाँ पर चलता नहीं है। ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जाता है और जहाँ पर पथरीला इलाका है वहाँ पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं, तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ऐसे में हैं हमारे किसान साथी। तालाब का बहुत ज्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है। जहां पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहां पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
3: 9425416603। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा यानी के इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी के फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहें रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: अपना रेडियो अपनी बातें। तो आपके आरजे मनीष
2: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी के रंग गीतों के संग इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे मित्र कुशाग्र मिश्रा मौजूद हैं। बाकी की बातचीत हम कुशाग्र से करेंगे। वो अपने बारे में हमें बताएंगे, वो कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। कुशाग्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज बताइए, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम कुशाग्र मिश्रा है सर, और मैं बेसिकली काशी से बिलोंग करता हूँ, और फिलहाल तो मैं जॉब में हूँ और लखनऊ में रहकर अपने एक जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में एज ए मेडिकल रैप। और बाकी सर मुझे कई चीज़ों का शौक रहा है कॉलेज टाइम से, जिसमें कि सिंगिंग रहा है और कभी कुछ गीत गज़ल भी लिखी है, कहानी भी लिखी है।
0: आपने सुना दोस्तों, कुशाग्र ने अपने बारे में बताया। यूं तो वो वाराणसी को बिलोंग करते हैं लेकिन आजकल लखनऊ में हैं। दोनों ही शहरों की संस्कृति अपने आप में भरपूर वैल्यूज और नियम कानून कहना उचित नहीं होगा, शायद संस्कृति को संस्कृति ही कहना ठीक होगा, भरपूर संस्कृति लिए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए फिर इन्हीं रंग में डूबे हुए एक बहुत खूबसूरत सा गीत के कुछ मुखड़े सुनते हैं।

0: बहुत बहुत प्यारा। कुशाग्र, मुझे ये बताइए, अगर आपको किसी एक बहुत मशहूर हस्ती, कोई पर्सनालिटी के साथ बैठने का मौका मिले, बातचीत करने का मौका मिले, या उन्हीं की तरह जीने का मौका मिल जाए, तो आप किसकी तरह जीना पसंद करेंगे?
1: सर, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जीवन में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड जो हूँ वो सुधांशु त्रिवेदी जी से और डॉक्टर कुमार विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जैसा कि कुमार विश्वास सर के बारे में मैंने देखा है कि उन्होंने आईटी से अपने करियर की स्टार्टिंग की, लेकिन बाद में वो साहित्य से जुड़े, साहित्य के बाद वो राजनीति में आए और राजनीति के बाद फिर उन्होंने भगवान राम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए सत्संग का, जिसमें अपने अपने राम के नाम से उन्होंने शो किया और आज भी उनके शो चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। मुझे लगता है कि इस देश को शायद वैसे ही किसी कथाकार या कहानीकार की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अब शायद अपनी जड़ों से ज़्यादा जुड़ नहीं पाए, क्योंकि शायद जो कथावाचकों ने जो हमें बचपन से जो कथाएँ सुनाई, भगवान का जो इमेज दिखाई, वो शायद बहुत ज़्यादा क्या कहूँ कि प्रासंगिक नहीं थी, उससे हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाए। लेकिन जो कुमार विश्वास जी का जब मैंने ये शो सुना, देखा, और मैंने देखा कि कैसे हर उम्र के लोग, मतलब बूढ़े से लेके बच्चे तक, हर चीज़ उन्होंने जिस लैंग्वेज में और जिस शैली में राम कथा को उन्होंने कहा, हर कोई उससे रिलेट कर पा रहा है। आज की पीढ़ी यही चाहती है कि उसको आज के परिवेश में पुराने इतिहास की चीज़ें सुनाई जाएँ, तो वो बहुत इंटरेस्ट होते हैं, ना सुनेंगी समझेंगी भी, क्योंकि आज की पीढ़ी को हर चीज़ में तर्क चाहिए, कसौटी पर वो उसे कस के ही चीज़ों को स्वीकार करते हैं। और ये जो है वो कुमार विश्वास सर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी भी सेम एज।
0: बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना कुशाग्र, कुमार विश्वास साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उनकी ही तरह की जीवन शैली वो अपनाना चाहते हैं, उन्हीं के तरीके के विचार वो रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बहुत सारे लोगों ने कुमार विश्वास जी को सुना है, और जैसा कुशाग्र ने कहा, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट कुमार विश्वास लेके आए हैं, जो उन्होंने रामायण को एक अलग परिवेश में एक अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मुझे भी एक याद पड़ता है, उन्होंने लक्ष्मण और सॉरी भरत और राम के दो भाइयों के बीच के विश्वास को और संबंधों को डिस्क्राइब किया है कुछ अलग ही शब्दों में, कुछ अलग ही विचारों के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी कुशाग्र आपने चुनी है, जिनकी तरह से आप जीवन जीना चाहते हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी रंग में डूबा हुआ एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब कुशाग्र, मुझे बताइए आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, सच बोलना, चुप रहना या झूठ बोलना, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो?
1: सर, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया, मैं उस सिद्धांत को ही फॉलो करता हूँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, यानी सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, लेकिन अगर सत्य कटु हो और किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाता है तो ऐसा सत्य ना बोलिए।
0: बहुत खूब दोस्तों, छोटा सा संदेश लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा, मानने में बहुत बहुत कठिन होता है क्योंकि झूठ बोलना बड़ा ही आसान काम होता है, कभी कभी मीठा भी लगता है। सच माना जाता है कि सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन दवाई भी तो कड़वी ही होती है, लेनी होती है हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए। अब आप माने या ना माने, सच्चाई तो यही है। हमारे पौराणिक वक्त से तमाम ऋषि मुनि और आध्यात्म में प्रकांड पंडित कह गए, अब वो हवा में तो कह नहीं गए होंगे, कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा उसके अंदर। बहुत बढ़िया कुशाग्र, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा, इतना सीधा सा और इतना स्वच्छ जवाब देने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया कुशाग्र, क्या आप अपनी किसी अच्छी और किसी बुरी आदत के बारे में हमें बताना चाहेंगे? अगर आप जवाब ना देना चाहें तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी, मेरी प्रार्थना होगी कि बताइए ना।
1: सर, वैसे तो बहुत सी अच्छी और बुरी आदतें हैं, पर कुछ आदतें हैं जो जिन्हें मैं बदलना चाहूँगा। जैसे जब मैं किसी से जुड़ता हूँ तो बहुत ही दिल से चीज़ों से जुड़ता हूँ, इसलिए जब ऐसे लोग कभी पीड़ा देके जीवन से जाते हैं तो उस पीड़ा को और उस व्यक्ति को मैं जल्दी भूल नहीं पाता। हालांकि उनके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती, लेकिन ये शायद अपने आत्मा की बहुत हानि करती है बहुत समय तक। इसलिए मुझे लगता है कि जो आपके जीवन से चला जाए उसे बहुत जल्दी ही आपको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन है, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश है अपनी इस आदत को बदलने की। और अच्छी आदत वही सर, जैसा कि मैंने बताया कि किसी के प्रति बहुत जल्दी, अगर मैं किसी से अगर जुड़ जाता हूँ तो फिर मैं उनके लिए फिर कह सकते हैं हनुमान हो जाता हूँ, हृदय में बसा लिया। अब कभी कोई हृदय चीर के देखे तो नहीं पाएगा। ये समर्पण ही मेरा भाव है और यही मेरा गुण है, लेकिन कभी कदाप यही मेरे लिए दोष बन जाता है।
0: बहुत खूब कुशाग्र, बहुत खूब। इस तरीके की आदतें कम ही लोगों में पाई जाती हैं। वैसे कहने को बड़ा आसान होता है कि हमने किसी को अपना लिया या किसी के साथ दिल जुड़ गया, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने आती हैं, परिस्थितियां सामने आती, तो हम कुछ अलग ही तरीके से परिस्थितियों में लिपट कर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो व्यक्ति एक ही तरीके से हमेशा बिहेव करे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चरित्र तो उसी का माना जाता है। अब ये लिखा भी है, माना भी जाता है। दोस्तों, आपकी इच्छा, आप क्या मानना चाहते हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हुए एक और मुखड़ा सुनते हैं, एक और गीत का।

0: बहुत खूब। कुशाग्र मुझे बताइए, आपकी यात्रा सूची में, यानी कि इफ इट ऑल यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस जहां पर आप जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उस जगह को देखना चाहते हैं, तो किसी एक ऐसी जगह के बारे में बताइए जहां आप यात्रा करके, ट्रैवल करके जाना चाहेंगे और क्यों?
1: सर, इस मामले में मैं राहुल साकंत जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवनी में कहा भी है कि शायद उन्होंने जीवन में शायद पढ़ के लोग जितना नहीं सीख पाते हैं उतना उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ यात्राएं करके सीखा है। और सच बात है कि यात्राएं इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। वैसे तो मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उत्तर पूर्व भारत की 7 सिस्टर्स पूरी मैं एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर और किन्नर कैलाश की यात्रा जरूर करना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि शायद सारे तीर्थ और बाकी सारी जगह शायद इंसान बार बार जीवन में जा सकता है, लेकिन किन्नर कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा इंसान जीवन में दोबारा कभी नहीं कर पाता है। और काशी में रहता हूँ, बाबा का भक्त हूँ, इसलिए उनसे उनको ढूंढने के लिए शायद कहते हैं कैलाश जो है पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और महादेव जो है केंद्र बिंदु पे ही विराजमान है, तो कहीं ना कहीं उनसे जो उनके लिए मन में जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो उन्हें ढूंढने के लिए भी शायद उनके घर की ओर ले जाती है। इसलिए कभी भी जीवन में का मौका मिला तो एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करना चाहूंगा।
0: क्या बात कही साहब, क्या बात कही। सुन के आपको भी रोंगटे तो खड़े हुए होंगे, मेरे तो हुए हैं। अगर आपके भी मन में इस तरह की कोई भी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कैलाश मानसरोवर को अपना टारगेट बनाएं, कोई भी जगह आप जाना चाहें उसको पूरी करने की, उस इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जीवन छोटा सा ही है दोस्तों, वक्त गुजर जाएगा और बाद में हमें शायद पछतावा हो कि हम ना कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुशागर, चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में जो भी जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में उससे प्रेम प्राप्त करना है, चाहना, इच्छा करना, देने के बदले पाना, ये तो व्यापार का सिद्धांत मैं मानता हूँ। असली प्रेम तो वो है जहाँ पे हम जब प्रेम किसी को दे के अगर आत्मा हमारी संतुष्ट हो रही है, खुश हो रही है, मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को तभी ये कहने का अधिकार है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मुझे तुमसे प्रेम है, क्योंकि वास्तविक प्रेम वही होता है। जैसे एक शिशु को जब एक माँ जब प्रेम देती है, प्रेम से दूध पिलाती है या जो भी उसके लिए ममत भाव जब वो समर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, तो आपने देखा होगा कि उस समय माँ जब बच्चे को प्रेम दे रही होती है तो वो निहाल होती है, उसको प्रेम दे के उसको उससे कोई अपेक्षा नहीं होती कि बदले में ये मुझे देगा, क्योंकि देने के बदले में देना ये तो व्यापार हो गया। लेकिन जहाँ सिर्फ देने से ही मन को तृप्ति मिल जाए, मन संतुष्ट हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, मेरे ख्याल से बस वही प्रेम है, बाकी तो सब संबंधों का व्यापार है। इसलिए प्रेम देना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत भावना है। हाँ, पाने में सुख अवश्य होता है, लेकिन वो तो इच्छा पूर्ति होने पर, अपने स्वार्थ की पुष्टि हो जाने पर जो संतुष्टि होती है वो मेरे हिसाब से वो भर उतनी ही माने हैं। बस असली प्रेम तो प्रेम करने में है, और प्रेम करने में अगर आपको सुख मिल रहा है तब आप किसी से कहिएगा कि मुझे तुमसे प्रेम है, अन्यथा वो प्रेम नहीं कुछ और ही होगा।
1: बहुत खूब कुशाग्र, बहुत खूब, बड़ी बेहतरीन बात कही। भूला उन्हें जाता है जिन्हें याद किया जाए, तो भूलने की बात आती ही नहीं। बहुत खूब कहा साहब, बहुत खूब कहा, क्या बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: कुशाग्र मुझे ये बताइए, कुछ प्रैक्टिकल, अगले 6 महीनों के लिए क्या लक्ष्य हैं आपके, क्या टारगेट हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पा लेना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं आप 6 महीने?
1: दरअसल जीवन अभी तक इतनी अनिश्चितताओं से मेरा भरा रहा है कि कभी भी जो सोचा है वो कभी हुआ ही नहीं। थ्रू आउट करियर मेरा जो रहा है, अभी तक का जीवन रहा है, बहुत कुछ सोचा था, आर्मी में जाने का सपना था लेकिन कहीं और जॉब की, तो इसलिए जीवन की इतनी अनिश्चितताओं को देखते हुए अब बहुत लंबा कोई प्लान नहीं करने की इच्छा होती है, ना सोच पाता हूँ। लेकिन अब जीवन में जो फेस चल रहा है उसके हिसाब से लगता है कि बस भगवान कृष्ण की एक बात समझ में आती है कि जब जीवन में कोई धारा ना समझ में आए कि आपको किधर बहना है, क्या करना है, तो अर्जुन अपने आप को बहती धारा के हवाले छोड़ दो कि वो धारा मेरी बनाई हुई है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो मेरे प्लान के हिसाब से चलो, निश्चित ही मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ही पहुँचाऊँगा। तो जब जीवन में मुझे नहीं समझ आता है कि मैं अगले पल या अगले दिन, अगले महीने, अगले साल क्या करूंगा, तो मुझे सामने भगवान कृष्ण की तरह बस वही चीज़ें दिखती, जो सामने मेरे है बस उसे करते जाओ। अब उसी में, उसी धारा में बहते बहते आज मेरी आपसे मुलाकात हो गई सर। मुझे लगता है शायद जीवन यहाँ से फिर कोई मोड़ लेने वाला है जिसे मैं नहीं देख पा रहा। और हम इंसानों की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, हम हमेशा इस जन्म में ऐसे पैदा हुए हैं तो कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन आगे तक देख पाते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो जानता है कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है, जिसने इतनी लंबी प्लानिंग करके रखी है, हम उससे आगे कैसे सोच सकते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ सर कि जो मैं कर रहा हूँ अभी, मैं कई करते रहूँ, मुझे खुद नहीं पता जीवन आगे कौन सा मोड़ लेके आना है, बस मुझे ये पता है कि जो मोड़ लाएगा उस मोड़ को मुझे मुड़ना है और फिर चलते जाना है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बड़ी ही सीधी सीधी सोच। कई बार होता भी है दोस्तों, आप गाड़ी से किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, रात का वक्त है, डिस्टेंस और दूरी कितनी है हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट जो शायद 100 मीटर तक ही जा रही होती है, बस उसी को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल को पाते हैं। 100 मीटर देखते चलिए, देखते रहिए और चलते रहिए, आपकी मंजिल आप तक आएगी। बहुत खूब कहा साहब, बहुत खूब कहा। चलिए इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।

0: कुशाग्र मुझे बताइए, आपके पास ऐसा क्या है जिसके बिना आप रह नहीं सकते?
1: ये तो बड़ा ही निजी प्रश्न हो गया लेकिन चलिए, हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा शख्स या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा उद्देश्य जीवन में रहता है जिसके बिना वो नहीं रह सकता। पर जीवन में मैंने इतना कुछ अभी तक जीवन में पाया भी है और खोया कुछ ज़्यादा है, और ऐसी चीज़ें खोई हैं जिस लगता था जिसके बिना अगर शायद वो ना हो तो जीवन ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी जीवित रहा, जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी जीवन में हो सकता है जिसके बाद शायद ये जीवन समाप्त हो जाए या ना हो। बहुत सी चीज़ें खोई हैं, अपनी बहुत प्रिय चीज़ कोई किसी को खोया है और उसके बावजूद जीवन जी रहा, इसलिए अब विश्वास, अब ये डर जो है वो मन से चला गया है कि कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है इसके बिना जीवन संभव ना हो। जीवन बहुत ही खूबसूरत भी है और कहीं कहीं बड़ा ढीठ भी है, कुछ भी हो जाए रुकता नहीं है। हमें लगता है कि हमारा जीवन रुक जाएगा, पर सत्य यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी रुकता नहीं है, हर चीज़ सांसों के साथ ही रुक सकती है। अगर सांसें हैं तो फिर इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है
0: पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी बाकी है। बहुत बढ़िया बात कही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: अब मैं कुशाग्र से पूछना चाहूंगा कि कुशाग्र, क्या आपके पास कुछ ऐसे नैतिक नियम हैं जो आप कभी नहीं तोड़ेंगे? कुछ हैं ऐसे नियम आपने बनाए हैं?
1: जी हाँ सर, ऐसे कुछ नियम हैं जीवन में मेरे, जैसे जैसे मैंने बताया कि समर्पण, मेरे ख्याल से इन सारे नियमों में एक सबसे प्रमुख नियम है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि संसार के सारे नियम उसी में निहित हैं, उसी से निकले हैं, या फिर अंत में उसी के मूल में पहुंचते हैं, और वो नियम है प्रेम का। मैं एग्जांपल के थ्रू उसको बताना चाहूँगा सर, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
0: कोई बात
1: जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम दो कारणों की वजह से किसी की ओर भी अट्रैक्ट होते हैं, किसी से हमारा संबंध स्थापित होता है, या तो व्यक्ति बिल्कुल हमारे जैसा हो तब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, या फिर कोई बिल्कुल ही हमारी पर्सनैलिटी के एकदम अपोजिट होता है, तब हमें वो इंसान के प्रति जानने की कोई इच्छा प्रकट होती है, उससे मित्रता करने की, उसके करीब जाने की इच्छा होती है। दोनों ही परिस्थिति में हम जो पहला स्टेप लेते हैं वो होता है मित्रता का, सबसे पहला चरण। उस मित्रता में जब हम और थोड़ा और परिष्कृत होती है, और थोड़ा उसमें प्रमोशन जब आता है आई थिंक, तब फिर हम उसकी और इज्जत, उसमें सम्मान बढ़ा के साथ, सम्मान के साथ उसमें हम और प्रेम ऐड करते हैं, तब फिर हम कहते हैं कि अब हमें इस इंसान से प्रेम होने लगा है। क्योंकि जब हम उसके साथ समय दे के, उसको अपना कुछ उसके साथ समय व्यतीत करके हम उसको जब प्रेम करते हैं तो ये और परिष्कृत हो जाता है, और उसके बाद इस प्रेम में एक और मान सम्मान और जुड़ जाता है, तो वो एक स्टेप और ऊपर बढ़ती है, फिर वो भक्ति में परिणत हो जाता है कि हम उसके अंदर ईश्वर को ढूंढने लग जाते हैं। और प्रेम और भक्ति, मित्रता, प्रेम और भक्ति, ये तीन चरण प्राप्त करने के बाद मेरे ख्याल से अंतिम चरण जो होता है वो होता है स्वयं ईश्वरत्व। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए मैंने राधा कृष्ण के संबंध को समझा। सर्वप्रथम कृष्ण को, भगवान कृष्ण को राधा जी से मित्रता की उन्होंने, फिर उन्होंने उनसे प्रेम हुआ, फिर वो उस प्रेम को पूजने लगे। एक समय ऐसा रहा कृष्ण राधा के पैर छूने लगे, और एक समय फिर वो भी आया जब कृष्ण ने कहा कि राधा के बिना मेरा नाम ही अधूरा है, इसलिए जब भी कोई नाम लेगा तो राधे कृष्ण करके नाम लेगा, अपने नाम से भी उन्होंने उसमें ऊपर रख दिया और राधा को देवी बना दिया, और आज सारा सकल संसार उनकी पूजा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेम भाव जो है यही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है, और यही मेरा स्वभाव बन गया। भले जीवन में प्रेम आए या जाए, लेकिन मैं इस प्रेम का स्वभाव नहीं त्याग सकता।
0: बहुत बढ़िया कुशाग्र भाई, इतनी गूढ़ बातों को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है हमारे दोस्तों को ये प्रोग्राम 2 से 3 बार सुनना होगा, जिससे कि वो ठीक से समझ पाए। लेकिन ऊपर ऊपर तौर पे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि प्रेम करना, ना कि प्रेम पाने की कोशिश करना, अपने को उतना शुद्धि पे ले जाना। तो दोस्तों, इस तरह के नैतिक नियम जिसमें समर्पण का पूरा भाव हो, वही जिंदगी में अपनाए जा सकते हैं देखा जाए तो। बहुत खूब।

0: आगे बढ़ते हैं कुशाग्र, आपसे पूछना चाहूंगा हल्का फुल्का सवाल। फर्ज कीजिए आपके ईष्ट देव, आप जिनको भी मानते हो, ईष्ट देव आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि तीन इच्छाएं अपने लिए, संसार के लिए नहीं, मांग लीजिए, आपको वरदान है, मैं देता हूं, तो वो तीन इच्छाएं आपकी क्या होंगी अपने लिए, संसार के लिए नहीं, क्योंकि संसार के लिए उनके पास इच्छाएं हैं, वो उनको देंगे।
1: बहुत जटिल सवाल आपने पूछा सर। तीन इच्छाएं, मेरे ख्याल से सबसे

0: और इस संसार को कुछ ऐसा दे जाऊं कि मेरा नाम मेरे जाने के बाद इस दुनिया में वो रेत के निशान की तरह ना रह जाए, पत्थर पे छोड़े हुए निशान की तरह रह जाए, ताकि मेरे माँ बाप को भी कभी मुझ पर गर्व करने का अवसर मिल ले और मेरी आत्मा को भी इस बात का संतोष हो मृत्यु के समय कि ये मनुष्य जीवन जो धारण किया था तो सिर्फ जी के खा के ऐसे ही नहीं चला गया, कुछ इस संसार से लिया था तो इस संसार को उसका 10 गुना कुछ दे के गया। बस इतनी ही इच्छा है, ये तो है पहली इच्छा। और दूसरी इच्छा प्रभु वो दृष्टि दे दे, वही कुछ ऐसा कि जो पाया जो खोया जो खोने वाला हूँ वो सब देख सकूँ और लोगों की अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। अगर मुझे लगता है ये दो इच्छाएं अगर ईश्वर ने दे दी तो शायद तीसरी कोई इच्छा शेष नहीं जाएगी, इसलिए तीसरी इच्छा शायद मैं यही उनसे मांगूंगा, प्रभु बस आप मिल जाइए, या फिर दो इच्छा भी जो है वो भी ना ले लीजिए, बदले में सिर्फ एक ही इच्छा दीजिए कि बस आप मिल जाइए, क्योंकि अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, भूत भविष्य वर्तमान सुख दुख प्रेम पीड़ा सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म, क्योंकि जहां आप हैं वहां तो कुछ है ही नहीं, शून्य है, और जो शून्य से परे हैं वो भी आप ही हैं। तो बस प्रभु आप मिल जाएं तो सब मिल जाएगा, फिर और कुछ नहीं शेष रह जाएगा।
1: बहुत बहुत बहुत ही प्यारी प्यारी इच्छाएं। चालाकी से उन्होंने वो मांग लिया जिससे सारी चीजें मिल जाएं, एक इच्छा बाकी सारी के सारे वरदानों के बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात कुशाग्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपने चरित्र में अपनी पर्सनालिटी में अपनी शख्सियत में उतारी होगी, नहीं उतारी होगी तो सोच तो रहे ही होंगे कि उतारी ली जाए। जब बात साफ है और उसको उसका कोई कंट्रोवर्शियल आंसर हो भी नहीं सकता, साफ है पानी की तरह, कैसे नकारेंगे उसे आप। बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया कुशाग्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई प्रोग्राम एंड टॉकिंग टू मी, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी।

दोनों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने
बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है लेकिन ये पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है। क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो। क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है।

लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास, हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

ночи.

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएनसीपी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा संगीत बनाने के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे न याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

0: और माता जी का नाम भूरी देवी था। और करीब 89 से मैं मुरादाबाद में ही परमानेंटली रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जॉब लगा था तो यहीं पे मैंने घर बना लिया है और यहीं रह रहा हूँ। वैसे मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है वो मुरादाबाद में ही हुई है, क्योंकि हमारा गांव मुरादाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो गांव से आए हुए मुझे 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है।
1: जी बहुत खूब,
0: 35 साल के करीब। जी
1: बहुत खूब। तो ना साहब, मैं गुजारिश करूंगा हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिए एक अपनी एक गजल सुनाएं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है,
1: जी
0: जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है।
1: वाह।
0: जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है, और जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है।
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है, और खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा।
1: वाह।
0: खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहां आता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहां आता है। और ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, कि बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है। और आखिरी शेर है गजल का, कि आसमां आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, तेरी औकात ही क्या किस लिए इतराता है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, तेरी औकात ही क्या किस लिए इतराता है। जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है।
1: क्या बात है, क्या बात है साहब। दिल की तमन्नाओं को छेड़ दिया, दिल की तमन्नाओं को हिला डाला सर। वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गजल। ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन है?
0: जगजीत सिंह।
1: वाह, बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के, बिना दूसरी सोच के अपना पसंदीदा गजल गायक को आपने बयां किया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए उन्हीं की कोई गजल हमारे दोस्तों को सुनवाइए।
0: जी, वो गजल है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं।
1: वाह, क्या बात है।
0: कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजल है
1: जी।
0: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं।
1: वाह वाह वाह,
0: जगजीत सिंह ने भी गाई है और शुजात अली खान ने भी गाई है गजल। बहुत प्रसिद्ध गजल है नूर साहब की।
1: तो किन साहिबान की गजल को सुनवाया जाए, आप हुक्म करें।
0: शुजात हुसैन खान ने गाई है, ये रिख्ता में गाई थी
1: जी,
0: और बहुत अच्छी तरह से गाई थी उन्होंने
1: जी।
0: मैं चाहता हूं वही सुनवा दीजिएगा।
1: ठीक है, बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म सर। तो आइए दोस्तों, इस गजल को सुनते हैं ना साहब की फरमाइश पर।

0: ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी गजल के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब भी आपको कुछ थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप उसमें?
1: मैं साहब लिखना पढ़ना ही बस मेरी हॉबी समझ लीजिए
0: जी,
1: इसके अलावा कोई और हॉबी नहीं है, या थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ और कुछ नहीं।
0: ओके।
1: जिंदगी से जो भी वक्त मिलता है, दफ्तर से आने के बाद, अब तो मैं खैर रिटायर हूँ 4 साल से
0: जी,
1: तो जनवरी 21 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था
0: जी,
1: और जिंदगी की भागदौड़ में सब कुछ जैसे भी जो भी समय मिला वो थोड़ा सा मनोरंजन में, लिखने पढ़ने में, घूमने फिरने में, यही बस उसको व्यस्त किया है।
0: बेहतर, बेहतरीन। तो ना साहब, मेरी गुजारिश है अपनी अगली गजल, एक और गजल हमें सुनाएं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं
0: जी।
1: कहता हूं कि हर वक्त हूं किसी ना किसी इम्तिहान में।
0: बहुत खूब।
1: आपने महसूस किया हुआ कि जिंदगी यूं तो खैर इम्तिहान का नाम है
0: जी,
1: बहुत से इम्तिहान आते रहते हैं और जब ज्यादा इम्तिहान इंसान पर आते हैं तो उसके लहजे में भी कुछ कड़वाहट आ जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा।
1: यहीं से मैंने ये शेर उठाया है कि हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में।
0: ओहो, क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया। हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में
0: जी,
1: और अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में।
0: वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब।
1: अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में और सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए।
0: जी,
1: सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में।
0: क्या बात है, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में, और गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में।
0: वाह, बहुत खूब,
1: सबको जगह मिली है, बहुत शुक्रिया। कि गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में। उन नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब
0: जी,
1: नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब, सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में, और मक्ता पेश करता हूं कि दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज
0: जी,
1: दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में, बहुत शुक्रिया। दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में, हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में।
0: तलखी जबान में, तलखी जबान में, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही प्यारी गजल। तो ना साहब, अपने पसंद के गजल गायक की अगली कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे आप?
1: हाँ, मैं गुलाम अली साहब ने गजल गाई है, रुक गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे।
0: जी।
1: रुक गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे, गम का तूफान तो बहुत तेज था, ठहरा कैसे।
0: अरे वाह, क्या बात है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: बेहतरीन। ना साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं?
1: मोटिवेटेड रखने के लिए साहित्य से अच्छी कौन सी चीज हो सकती है?
0: जी,
1: साहित्य तो वैसे भी हमें प्रेरित करता है, और मैं समझता हूं कि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मोटिवेटेड रहते ही अमूमन।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात सही है। भला सूरज को रोशनी की क्या जरूरत है, सूरज के पास तो खुद ही रोशनी ही रोशनी है। बहुत बढ़िया, जो साहित्यकार हैं उन्हें भला मोटिवेशन की क्या जरूरत है, वो तो खुद मोटिवेशन है। बेहद खूबसूरत। तो ना साहब, अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल और आप हमें सुनाए।
1: बेहतर बेहतर, मैं हाजिर करता हूं।
0: इरशाद,
1: कहता हूं कि जहन की आवारगी को किस कदर प्यारा हूं मैं, जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं,
0: बंजारा मैं हूं। बहुत बढ़िया,
1: जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं, और राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल।
0: बहुत खूब।
1: बच्चों में इंसान अपने आप को तलाश करता है
0: जी,
1: और बच्चों के आगे झुकता है
0: जी,
1: उनकी इच्छाओं के आगे झुकता है कि राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं, राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं, और जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास,
0: सोख ली सारी मिठास
1: जी
0: जी,
1: जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास, मैं समंदर हूं मगर बे इंतहा खारा हूं मैं,
0: बे इंतहा। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास, मैं समंदर हूं मगर बे इंतहा खारा हूं मैं, और अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले
0: जी,
1: अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले, तू मेरा आकाश है तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं,
0: तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं। क्या बात है, बेहतरीन,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत बढ़िया।

0: बहुत शुक्रिया। ये अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले, तू मेरा आकाश है, तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं, और आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद।
1: जी,
0: आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद, वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं।
1: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग,
0: बहुत शुक्रिया। ये आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद, वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं
1: जी,
0: और मकता है कि मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज।
1: जी जी,
0: मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज, फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं,
1: आवारा हूं मैं, आहा,
0: फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं। मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज, फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं।
1: जी,
0: जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं,
1: जी
0: साथ चलती है मेरे ये कैसा बन जा रहा हूं मैं। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब साहब।

0: पाएंगे बहलाने फुसलाने में।
1: बहलाने फुसलाने में क्या बात है।
0: और शुक्रिया। अपना परिंदे आप आएंगे बहलाने फुसलाने में
1: जी।
0: और एक शेर, ये आखिरी शेर है गजल का
1: जी,
0: मैं इसे खासतौर से पेश करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं के लिए भी
1: जी,
0: कि आज क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ आ गई है
1: जी।
0: वो यूं है कि कुछ तो कलियां ही खुद अपनी सीमाओं को भूल गई
1: जी,
0: कुछ तो कलियां ही खुद अपनी सीमाओं को भूल गईं, कुछ भौरों की भी साजिश थी कलियों को बहकाने में।
1: ओहो क्या बात है।
0: कुछ तो कलियां ही खुद अपनी सीमाओं को भूल गईं, कुछ भौरों की भी साजिश थी कलियों को बहकाने में। हमने यूं भी वक्त गुजारा मस्ती में याराने में, जब जी चाहा घर से निकले बैठ गए मैखाने में।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत खूब साहब, मजा आ गया सुनकर।
0: शुक्रिया।
1: सुरूर हो गया। ना साहब, आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सबसे पसंदीदा गजल गायकों में से गजल कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा है, जो आप सुनना पसंद करते हैं जब भी आपको मन करता है तो?
0: देखिए, अगर हम किसी एक गजल को कहें तो वो दूसरी गजलों का अपमान होगा उनकी भी।
1: ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है।
0: क्योंकि अगर जब हम किसी एक का चुनाव करते हैं
1: जी,
0: तो हम बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं
1: जी जी,
0: और कलाकार को और कला को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है
1: जी।
0: इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार आप ही अपनी पसंद की गजल हमें सुनवाइएगा।
1: क्या बात है, क्या बात है साहब। सर देखो, मैं शायर नहीं हूं, मैं सिर्फ सुनने वालों में से हूं जो सुनते हैं, और बस कुछ कुछ गजलों को और कुछ कुछ गजल गायकों को दिल दे बैठते हैं। तो गुलाम अली साहब की एक गजल है, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। ये गजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही प्यारी गजल है। तो मैं आपकी इजाजत हो तो गुलाम अली साहब की यही गजल मैं
0: अपने बेशक, बेशक, बहुत अच्छी गजल है, बहुत अच्छी गजल है। देखिए, मेरी पसंद तो आपकी पसंद में निकल आई है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो साहब, दोस्तों आइए सुनते हैं ना साहब के हुक्म पर और मेरी पसंद पर ये गजल।

0: ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल आप हमें और सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: हुजूर, मैं एक गजल आपको जो पेश कर रहा हूं
0: जी,
1: ये बिल्कुल ताजा गजल है, आप यूं समझिए कि इसमें से भाप उठ रही है।
0: ओ माय गॉड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
1: और चूंकि शायर तो या कवि अपने चारों तरफ के वातावरण में जो देखता है
0: जी
1: उसी को लिखने की कोशिश भी करता है
0: जी जी,
1: क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और साहित्यकार के जो लेखन उपकरण है वो इसी समाज से लिए गए हैं।
0: क्या बात है।
1: तो वो समाज को नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत
0: जी।
1: तो मैं एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं।
0: इरशाद।
1: कहता हूं कि कोई तो है
0: जी
1: जो बुराई से लड़ना चाहता है।
0: ओहो।
1: कोई तो है जो बुराई से लड़ना चाहता है, मिजाज शहर का जब भी बिगड़ना चाहता है। मिजाज शहर का जब भी बिगड़ना चाहता है। कोई तो है जो बुराई से लड़ना चाहता है, मिजाज शहर का जब भी बिगड़ना चाहता है। और हवाओं तुम ही निकालो कोई नई तरकीब। हवाओं तुम ही निकालो कोई नई तरकीब के जर्द पत्ता शजर से बिछड़ना चाहता है।
0: ओहो, बहुत खूब।
1: के जर्द पत्ता शजर से बिछड़ना चाहता है। हवाओं तुम ही निकालो कोई नई तरकीब के जर्द पत्ता शजर से बिछड़ना चाहता है। और बढ़ाओ जरा सी लौ इसकी
0: जी,
1: बढ़ाओ और बढ़ाओ जरा सी लौ इसकी कि ये चिराग अंधेरों से लड़ना चाहता है।
0: अरे वाह, बहुत खूब।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये बढ़ाओ और बढ़ाओ जरा सी लौ इसकी कि ये चिराग अंधेरों से लड़ना चाहता है। और तमाशबीनों से कह दो अब अपने घर जाएं।
0: जी,
1: तमाशबीनों से कह दो अब अपने घर जाएं। हुई है शाम ये मेला उखड़ना चाहता है।
0: ये मेला उखड़ना चाहता है, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया। हुई है शाम ये मेला उखड़ना चाहता है। तमाशबीनों से कह दो अब अपने घर जाएं।
0: जी,
1: हुई है शाम ये मेला उखड़ना चाहता है। और गजल का आखिरी शेर है कि जो आंखें ख्वाब सजाती थीं हर घड़ी उनमें
0: जी,
1: जो आंखें ख्वाब सजाती थीं हर घड़ी उनमें अब आंसुओं का समंदर उमड़ना चाहता है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: अब आंसुओं का समंदर उमड़ना चाहता है। जो आंखें ख्वाब सजाती थीं हर घड़ी उनमें अब आंसुओं का समंदर उमड़ना चाहता है। कोई तो है जो बुराई से लड़ना चाहता है, मिजाज शहर का जब भी बिगड़ना चाहता है। शुक्रिया।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गजल, बहुत खूबसूरत। क्या शब्दों के साथ, क्या लफ्जों के साथ आपने एक बेहद बेहद खूबसूरत तारतम्य बिठाया है, एक बेहद खूबसूरत माला बनाई है। बहुत बहुत बढ़िया ना साहब, मजा आ गया।
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अब अपने पसंदीदा गजल गायक की कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं
0: जी,
1: और आपने जो गजल अभी पिछली बार
0: चुनी
1: सुनाने का वादा किया है
0: जी,
1: बहुत प्यारी गजल है। और यकीन जानिए कि जो मेरी पसंद है, मुझे लग रहा है कि वही आपकी पसंद है, या जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप ही की पसंद सुनूं इस
0: बार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इस बात पे ना साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस जर्रा नवाजी का। मुझे याद है, मैं 1986 से 1990 के बीच में IIT BHU में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे से दो साल सीनियर्स के बैच को हम लोगों ने फेयरवेल दिया, और उसमें एक हमारे सीनियर, मेरे सीनियर हैं रविंद्र पांडे जी, जो अच्छा। आज की डेट में वड़ोदरा में हैं, बड़ौदा में हैं। और
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: तो उस वक्त मैं तो बिल्कुल बच्चा ही हुआ करता था, और उन्होंने फेयरवेल के दौरान एक गजल सुनाई जो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अटक के रह गई। और सालों साल गुजर गए, मतलब सर 30-35 साल गुजर गए,
1: और अच्छा।
0: समाव मैं उनसे संपर्क में नहीं रह सका, लेकिन वो गजल दिमाग में घूमती रही। और ये पता नहीं कहां से एक दिन मुझे उनका नंबर मिला, तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने उनको बोला सर मैं समीर गोयल बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, तो वो पहचान थोड़ा सा नहीं पाए क्योंकि 35 साल गुजर चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये याद है कि 1989 में हमने आपको फेयरवेल दिया था BHU में, और आपने वहां पर एक गजल सुनाई थी, तो वो गजल के जो दो लाइनें थी बस वो ही मुझे याद रह गई, उसके बाद सब भूल गया मैं। तो वो सर गजल है किसकी और कौन साहब हैं, कहाँ मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो उनको याद आया, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा वो बच्चा बोल रहे हो तुम। मैंने कहा जी सर गुरुजी मैं वही बोल रहा हूं। तो कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बताई, तो वही गजल मैं आज आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा कि वो गजल है पंकज उदास साहब की।
1: अच्छा अच्छा।
0: और वो कुछ इस तरह थी, गम की घटा जो छाए तो फिर झूम के बरसे। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये पंकज उदास की गजल है, ढूंढ ले बेटा मिल जाएगी। तो आपकी इजाजत हो तो यही गजल मैं अपने दोस्तों को सुनवाना चाहूंगा।
1: लाजवाब गजल है, लाजवाब गजल है, इसका हम भी मजा लेंगे और हमारे श्रोता भी मजा लेंगे। बहुत खूबसूरत गजल है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मैं अपने सुनने वालों की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपकी बेहतरीन बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरी सीधी सादी लेकिन बहुत भारी भरकम मैसेज वाली गजलें हमने सुनी, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: मैं इन मोहब्बतों के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, एक बार फिर आपका और हमारे श्रोतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया।

0: રૂપિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके. बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि. जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं. साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी. तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती के सारी में.
2: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो. ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं. कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है. लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है. एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना. इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है. एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है. इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए. रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं. देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है. भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है.
3: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है. मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की. राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना. देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है. फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम. एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी, भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
2: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
3: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
2: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
4: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस

0: कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ा सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील, आप रेडियो आपड़ी बातें।
1: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है, और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है पशुधन। और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है, बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
3: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है, जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं, वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजना के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या Group 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
2: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
3: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
2: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचानकर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
2: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: रेडियो टांटे अभी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा योगदान पशुधन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
1: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: तड़प मारे थोड़ा
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी जीआई टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दाले, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है। यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेतीबाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
4: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकार है इसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप एरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहां पर चलता नहीं है। ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज्यादा जमीन है वहां पर ट्रैक्टर चलाया जाता है, और जहां पर पथरीला इलाका है वहां पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं। तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की जरूरत है, और ऐसे में हमारे किसान साथी तालाब का बहुत ज्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहां पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहां पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
3: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांटिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
4: 9425416603। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
3: तो साथियों अब हमारा यानी के इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी के फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: अपना रेडियो अपनी बात है। तो आपके आरजे मनीष
3: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आय किस तरीके से दुगनी हो, किस तरीके से बड़े, तो हमें क्या करना होगा। आय तभी दुगनी होगी जब हम आधुनिक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे, हम जैविक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं बार बार किसानों के लिए नई नई योजना के तहत जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय दुगनी हो। तो हमारे अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम अब 52 जिलों में प्राकृतिक खेती पर जोर देंगे। प्राकृतिक खेती पर जोर देना यानी हम किस तरीके से जैविक पद्धति से खेती करें, क्योंकि उनको भी सभी लोगों को एहसास होने लगा है कि अब हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम बदलते मौसम में हम अपने आधुनिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को दुगनी करें, क्योंकि हम वही परंपरागत खेती करते रहते हैं और वही बीज बोते रहते हैं जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। और खासतौर पर जब हम केमिकल भरी यानी रासायनिक खेती पर का जिक्र करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम अपनी मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें एहसान जो एहसास है उसको हम अब कैसे हम अपने खेती को एक आधुनिक पद्धति से करके अपनी आय में बढ़ोतरी करें। खासतौर पर छोटे छोटे उन्होंने टिप्स भी देते हैं, हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी हैं कि हमारे किसान साथी छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी इसमें कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजीविका के स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे आजीविका को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे ऐसे कुटीर उद्योग हैं जो हमारे किसान साथी, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमारे किसान साथी खेती के साथ साथ वो भी उद्योग कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज तीन सेगमेंटों पर बात करेंगे। पहला, हम किस तरीके से जो हमारे पेड़ लगे रहते हैं पेड़ के आसपास हम बर्मी कंपोस्ट लगाकर हम किस तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं। दूसरी बात, सीप। अब लोग सोचते हो कि मोती कहां से आते हैं, मोती की भी खेती होती है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी हम सेगमेंट हम लेकर आएंगे मौसम आधारित जानकारी भी हम लेकर आएंगे और खास तौर पर हम एक सफल व्यक्ति की कहानी भी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आपको सुनाएंगे। तो हम देर नहीं करते हैं और हम अपने श्रोता साथियों को बर्मी कंपोस्ट जो खेत के आसपास यानी वृक्ष के नीचे जो हम कंपोस्ट उगाते हैं कैसे उगाते हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से व्हीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले है। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखे। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ा रेडियो अपनी बातें। और मित्रों, अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपनी खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने यह घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे।

0: हम तरफ मारे थोड़ा सा।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
2: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।

साथियों, अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम खेत खलिहान में मौसम की जानकारी का। तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उड़द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लिड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी की पलटने वाले हल से कर दें, ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सके, तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोनोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरोम फास 40 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो

छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉइंट के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉइंट में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉइंट के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉइंट बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉइंट से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉइंट के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार के बेहद बेहद इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एक नए खूबसूरत एपिसोड में आप सभी दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं अर्पिता चौधरी जी, फार ईस्ट से, तिनसुकिया से। अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दीजिए ना, आप कौन हैं, क्या करते हैं?
1: मैं तिनसुकिया असम से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ
0: जी। और
1: गाना उना सीखा है कुछ कुछ, ट्राई भी किया है, पहले पब्लिक परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है हम लोगों का,
0: अरे वही शादी के बाद आप हस्बैंड को डांटते हो, बच्चों को डांटते हो?
1: ना, हस्बैंड भी म्यूजिशियन ही है, ड्राम प्लेयर है।
0: ओ,
1: तो
0: अरे अमेजिंग अमेजिंग, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिकल फैमिली। तो फिर तो मजा आता होगा, अच्छा संगीत में बैठक बैठक जमती होगी घर में।
1: हाँ हाँ, संगीत का महफिल बैठता है और माहौल भी म्यूजिक का ही है।
0: हाँ, तो यही तो पूछ रहा था ना मैं आपसे। देखिए, इतना तो कुछ करती हैं आप अर्पिता जी, फिर कहती हैं कुछ नहीं करते, क्या बात कर रहे हो?
1: वही शौक से कुछ तो गाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना अर्पिता जी एक म्यूजिक फैमिली को चलाती हैं, एक म्यूजिक फैमिली मेकर हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: ऐसे तो स्कूल टीचर टीचर टीचर इज अवर रोल मॉडल नो, तो बहुत मन में इच्छा था कि टीचर बनूं। वही
1: तो कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर होंगे उस जमाने में, जिनको देखकर आपको लगा होगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए। कौन थे वो?
0: बहुत सारे बहुत सारे, स्कूल टाइम में बहुत सारे टीचर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को, करते थे।
1: जी, एक दो टीचर्स का नाम तो लीजिए।
0: हम लोगों का जो थे गोपादी दुनिया हम लोग बोलते थे,
1: जी, तो
0: सो मेनी।
1: दोस्तों, आपने सुना, अर्पिता जी बचपन में टीचर बनना चाहती थी और बहुत सारे टीचर्स से वो इन्फ्लुएंस्ड भी थी। तो अगला जो गीत है, अगला जो सॉन्ग है अर्पिता जी का, वो हम अर्पिता जी के टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, बचपन की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, तो जब आप स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
1: एसएसटी, सोशल स्टडीज।
0: सोशल स्टडीज, एसएसटी,
1: सोशल स्टडीज।
0: बहुत बढ़िया। तो सोशल स्टडीज में भी कोई खास चीज थी जो आपको पसंद आती थी, जिसकी वजह से सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट फेवरेट हुआ?
1: बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे ना, एडेड थे तब
0: जी।
1: पढ़ने में इंटरेस्ट लगता था, बोरिंग चैप्टर नहीं था कोई।
0: ओके, तो कोई एक चैप्टर तो बताइए ना, कोई एक टॉपिक तो बताइए ना।
1: अभी याद नहीं है।
0: ओके जी,
1: प्रॉपरली याद नहीं है।
0: हाँ ठीक है, कोई बात नहीं अर्पिता जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए,

0: बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, आपको क्या लगता है, आपने तो दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव है आपको, अगले 5 सालों में दुनिया कैसी दिखाई देने वाली है, क्या अंदाजा है आपका?
1: टेक्निकली बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है और भी होंगे, शायद
0: जी।
1: होता ही रहेगा। वही आजकल का दुनिया में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों का टाइम में तो इतना नहीं था, शायद और भी आगे बढ़े।
0: ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, टेक्निकली अर्पिता जी का मानना है कि दुनिया और आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया अर्पिता जी, अगर आपके बारे में कोई किताब लिखी जाए तो मुझे बताइए ना कि उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए?
2: म्यूजिकल जर्नी।
1: म्यूजिकल जर्नी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर अर्पिता जी के ऊपर एक किताब लिखी जाएगी तो उसका टाइटल होगा म्यूजिकल जर्नी। बहुत खूब, द टाइटल इन इटसेल्फ इज वेरी म्यूजिकल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक म्यूजिकल सॉन्ग, म्यूजिकल गीत, बहुत ही सुरीला, सुनते हैं अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया, बड़ी ही प्यारी गायकी। अब पिताजी, आपका पसंदीदा रंग क्या है, कलर कौन सा पसंद करती हैं आप, और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है, आपको क्यों पसंद है वो रंग?
1: कोई भी सोबर सॉफ्ट कलर अच्छा लगता है, लेकिन व्हाइट, लाइट पिंक अच्छा लगता है।
0: क्यों?
1: लाइट शेड सोबर एंड सॉफ्ट लगते है,
0: ओके,
1: हार्श नहीं होता है।
0: हार्श नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हार्श कलर्स पसंद नहीं आते हैं अर्पिता जी को, सॉफ्ट एंड सोबर कलर अर्पिता जी को पसंद है। बहुत खूब, बड़े ही प्यारे सॉफ्ट एंड सोबर गीतों की तरह, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अर्पिता जी, इमेजिन कीजिए, फर्ज कीजिए, एक सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिले, बैठ के कुछ कॉफी पीने का, चाय पीने का मौका मिले, तो आप किसके साथ बैठकर बातचीत करना चाहेंगी? कोई हिस्टोरिकल फिगर, हिस्ट्री में से कोई।
1: हम लोग एकदम छोटे से ही रविंद्र संगीत गाते हुए बड़े हुए हैं, बिकॉज वही तो है हम लोगों का रोल मॉडल इन एवरी बेंगोलीज, मैंने माइंड में जो है वो रविंद्रनाथ ही है।
0: बिल्कुल,
1: वही वो मिल जाते, देखने से ही
0: जी
1: मन भर जाता।
0: क्या बात है, बड़ी ही प्यारी बात कही, बहुत एप्रोप्रिएट बात कही, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, बहुत यूनिक, और मुझे सुनकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि संगीत से संबंधित एक पर्सनालिटी और रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके साथ बैठकर आप चाय पीना चाहेंगी, आप उनके साथ बातचीत करना चाहेंगी, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुन रहा था, एक बहुत ही अमेजिंग बात मेरे को पता चली उससे। अब उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बता रहे थे वो खुद काफी ऑथेंटिक हैं। उन्होंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, बहुत छोटे में ही उन्होंने एजुकेशन, स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था, वो घर पे ही पढ़ते रहे, उनके फादर ने उनको अलाउ किया। उसके बाद बड़े होकर उन्होंने बंगला में एक कविता लिखी जिसका नाम था गीतांजलि, सभी को पता होगा, और लोगों ने उस पोयम को, उस कविता को पढ़कर कहा कि साहब आपको इंग्लिश में इसको लिखना चाहिए। उनको इंग्लिश नहीं आती थी और कभी वो स्कूल भी नहीं गए थे। उसके बाद 2 साल उन्होंने घर पर बैठ के इंग्लिश सीखी, इमेजिन कीजिए, और उसके बाद उसी गीतांजलि कविता को इंग्लिश में लिखा। उसको इंग्लैंड के एक पोएट ने, जो कि नोबेल प्राइज विजेता था, पढ़ा, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की इंग्लिश में लिखी हुई गीतांजलि को प्रमोट किया, और उस कविता के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत गर्व हुआ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, क्या लोग आपके बारे में कभी कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या? कुछ कभी उनको लगता हो कि कुछ गलतफहमी हो जाती हो उनको आपके बारे में, ऐसा कुछ आपको लगता है?
1: हाँ, लगता है, लगता है
0: क्या
1: शायद
0: क्या
1: कभी तो वो लोग बोले नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है।
0: तो आज दूर कर लेते हैं उस गलतफहमी को, बताइए ना।
1: असल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ,
0: ओके।
1: तो ये आदत ही मुझे मार देती है। वो लोग समझते हैं कि आई एम वेरी प्राउड,
0: ओके
1: वही बात है।
0: ओके दोस्तों, आज हम लोग इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। अर्पिता जी ऐसा घमंडी नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो अपने में रहना चाहती है, विचार करते रहना चाहती है, सोचते रहना चाहती है। इस चीज को अपने जहन से निकालिए, वो घमंडी नहीं है, वो प्राउडी नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए आप सभी लोगों को डेडिकेटेड।

0: बहुत सुंदर। अर्पिता जी, अगर आपको ईश्वर कहे कि चलिए आपकी मैं तीन इच्छाएं पूरी करता हूं, तो क्या तीन इच्छाएं मांगेंगी आप?
1: हम लोगों का वॉयस जो है, अपना वॉयस तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, वही बात मेरे साथ भी है, वॉयस थोड़ा स्वीट कर दे।
0: ओह क्या बात है, सो स्वीट। ओके ओके।
1: एक दो जो इच्छाएं है मन में वो 50% पूरी होने से भी चलेगा।
0: अच्छा ओके।
1: है अपना अपना तो है कुछ अरमान दिलों में, वही सब
0: नहीं।
1: और थर्ड पीसफुल्ली रहना अच्छा लगता है।
0: पीसफुली रहना अच्छा लगता है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है तो दोस्तों आपने सुना क्या तीन इच्छाएं हैं। सबसे प्यारी इच्छा तो यही है कि उनकी आवाज और मीठी हो जाए और स्वीट हो जाए, बड़ी ही प्यारी बात। तो चलिए, जब तक अर्पिता जी की आवाज और स्वीट होती है और हमें और स्वीट गाने मिलते हैं, तब तक जो भी हमारे पास अर्पिता जी के स्वीट स्वीट गाने हैं, हम उन्हीं को सुनते हैं अगले गीत में।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत। अर्पिता जी, आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली है, सबसे अच्छी एप्रिसिएशन क्या मिला है?
1: मिली है, सबसे अच्छी मिली है एक छोटा सा 5 इयर्स 6 इयर्स का बच्चा, सब दीदी बोलते तो वो भी दीदी बोल दिया आंटी बोलने के बजाय, तो वही अच्छा लगा जो सोचा है इस टाइप में। थिंकिंग उसका है, आंटी नहीं समझ के थोड़ा हट के सोचा है।
0: बहुत प्यारी बात, क्या बात कही आपने, देखिए ना दोस्तों कितनी प्यारी बात कही।
1: जी बच्चे का जहन में है
0: जी जी,
1: जो आंटी नहीं बोल के दीदी बोले।
0: वेरी नाइस, बहुत प्यारी बात दोस्तों, आपने सुना कितनी प्यारी बात छोटे से बच्चे ने करी। अर्पिता जी को सुनकर भी अच्छा लगा, हमें भी सुनकर अच्छा लगा कि आंटी बोलने के बजाय या कुछ और बोलने के बजाय, क्योंकि सब लोग उसको उनको दीदी बोल रहे थे तो उसने भी दीदी बोल दिया। वाओ, मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को एक्नॉलेज करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, उसको क्या कह के बुलाना से कोई मतलब नहीं है। हम देखे ना, हम भगवान को भी तो तू कह के बुलाते हैं। कब हम बोलते हैं कि भगवान जी आप आ जाओ, भगवान जी आप खुश हो जाओ, आप कब बोलते हैं? हम तो भगवान को तू कह के बुलाते हैं कि तू ही है मेरा दाता, तू ही है मेरा रक्षक, तू बोलते हैं। हाउ क्यूट इज दैट, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। अर्पिता जी आगे बढ़ते हुए बड़ा ही प्यारा सा गीत हम उस बच्चे को डेडिकेट करते हैं।

0: अर्पिता जी, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए क्या संदेश है आपका?
1: सुनते रहे, शांति मिलती है गानों से व म्यूजिक से, बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है।
0: जी,
1: आप सिर्फ जब खुशी में हो तब भी सुनते रहिए, जब दुख में हो तब भी सुनते रहिए, गाना सुनते रहिए।
0: बहुत खूब,
1: बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।
0: बहुत खूब दोस्तों, बिल्कुल जहीन से आ एक संदेश है अर्पिता जी का। दुख हो तभी भी गीत सुनिए, सुख हो तभी भी गीत सुनिए। यूं देखें तो अर्पिता जी संगीत को, म्यूजिक को भगवान के तुल्य मानती हैं, ईश्वर के तुल्य मानती हैं, क्योंकि हम ईश्वर को भी तो बोलते हैं ना कि सुख हो या दुख हो हमें उसको याद करते रहना चाहिए। उसी तरीके से संगीत को भी, दुख हो या सुख हो, हमें अपने पास रखना चाहिए। बहुत खूब अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। मोस्ट वेलकम। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, सुनती रहेंगी, हम लोगों को गाइड करेंगी, हमारे जो नए सिंगर्स हैं उनको भी गाइड करेंगी और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगी। थैंक यू सो मच अर्पिता जी।
1: श्योर श्योर। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।
1: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेस हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से।
2: जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे।
1: आज के कलाकार के इस नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं ये प्लेटफॉर्म है नए टैलेंट्स का, नए सिंगर्स का, नई प्रतिभाओं का। और आज हमारे साथ एक टैलेंट, एक सिंगर, एक गायक हैं जिनका नाम है अरिंदम बिस्वास साहब। बाकी की बातचीत हम अरिंदम साहब से ही करेंगे, वो अपने बारे में खुद आपको बताएंगे। अरिंदम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए
3: जी
1: अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
3: अच्छा, आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार और समीर जी को मेरा नमस्कार। तो मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम है अरिंदम बिस्वास और मैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का एक ऑफिसर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। मेरा रैंक है डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कलेक्टर। तो एट प्रेजेंट मैं नॉर्थ बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जो है नॉर्थ बंगाल में कूचबिहार जिला में मैं पोस्टिंग हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो अरिंदम जी, आप जब छोटे थे, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे?
3: मैं बचपन में बहुत सारे मतलब फिल्म्स देखते थे, मूवी पेरेंट्स के साथ, तो मैं वो गाना सुन के याद कर लेता था
1: जी।
3: तो मतलब तभी से मेरा वो हॉबी बना हुआ था। तो मैं सिंगर बनना चाहता था।
1: वाओ।
3: लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मतलब जो नौकरी का जो होता है मिशन, वो पढ़ाई का साथ साथ वो भी रह गया था। तो मतलब मैं नौकरी में ही आ गया, लेकिन सिंगिंग का पैशन अब भी रह गया मेरा अंदर।
1: बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। आपने सुना, पैशन बचपन से ही था। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को अरिंदम जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी स्टार्ट। अरिंदम जी, क्या आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में ऐसा कोई सवाल है जो शायद आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ जवाब दे दें? कोई सवाल है आपके दिमाग में ऐसा?
1: हाँ, मेरा ऐसा कुछ है कि आप मुझसे पूछे कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है, या मेरा फेवरेट हीरो कौन है, या मेरा फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है।
0: बहुत खूब।
1: तो उसका जवाब मैं बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो मेरा फेवरेट सिंगर सभी है, मतलब रफी साहब है, मन्ना डे साहब है, किशोर कुमार जी है, कुमार सानू दा, उदित जी सभी है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, वो किशोर दा है। और मतलब बचपन से किशोर दा का गाने मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, तो मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मुझे हीरो में से विनोद खन्ना जी बहुत पसंद है, और मैं छोटा से उनका बहुत फैन हूँ। तो और म्यूजिक कंपोजर में तो मेरा फेवरेट है आर डी बर्मन साहब
0: आर डी बर्मन।
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया।
1: और तो सभी का गाना ही सुनता हूँ, इसका ये मतलब खाली किशोर दा का गाना सुनता हूँ ये नहीं, सभी का गाना मैं सुनता हूँ, और सभी को ही मैं मतलब सब सिंगर्स मेरा फेवरेट है, सबका गाना ही मैं एडमायर करता हूँ।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, अरिंदम जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत प्यारा गीत। अरिंदम जी, जब आप छोटे थे स्कूल में आपका सबसे फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
1: स्कूल में मेरा बचपन में फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। उसका बाद आफ्टर क्लास 8 मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। वो कुछ मेरा टीचर का कंट्रीब्यूशन था, जिनके पास मैं ट्यूशन करते थे, तो उन्होंने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाते थे कि मैथ्स मेरा फेवरेट बन गया।
0: बहुत
1: टोटली इट्स वो शिफ्ट हो गया मेरा पसंद।
0: क्या बात है, अमेजिंग। ज्योग्राफी से मैथमेटिक्स की तरफ, बहुत खूब
1: जी।
0: ये तो एक बुक का टाइटल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी गायकी। अरिंदम जी, आपके विचार में, आपके इमेजिनेशन में अगले 5 सालों में हमारी दुनिया कैसी दिखाई देगी, थोड़ा इमेजिन करके हमें भी बताइए ना।
1: देखिए, अभी साइंस जो है वो इतना तरक्की कर गए हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो टेक्निकली हम लोग बहुत सारे कुछ देख सकते हैं। हाँ, उसमें से कुछ है ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, मतलब हम लोग का जो रफ्तार है, हम लोग यहाँ से वहां जाने के लिए जो अभी जो ट्रेन का हम हर वक्त देखते रहते हैं कि ट्रेन इतना, ये ट्रेन इस टाइम पहले जाता था, अभी उसका स्पीड बढ़ गया है, इतना टाइम में जाएगा, दूसरा ट्रेन दे दिया है इस रूट में। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन या बोलिए या कुछ, इसमें तो बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा मुझे लगता है। और उसका साथ साथ ये भी मुझे डर लगता है हमेशा समीर
0: जी,
1: कि जो ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत दिनों से ही चल रहा है प्रॉब्लम। तो ये जो हम लोग का जो पेड़ है, हम लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काट के सब जगह मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हो रहा है या सब जगह, मतलब जो है फॉरेस्ट एकदम ही चला जा रहा है
0: जी।
1: और उसी के लिए देखिए, जो फॉरेस्ट का जो एनिमल्स है, जो फॉरेस्ट में रहता है, वो लोग का भी लाइफ एंडेंजर्ड हो गया है।
0: करेक्ट।
1: और हम लोग का भी बहुत बहुत, मतलब जैसे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए नॉर्थ पोल जो है उसमें, वहां भी मतलब बहुत सारे कंट्रीज अंडर वाटर हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ डिजास्टर हो सकता है इन फ्यूचर। और उसका साथ साथ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का साथ साथ जैसे बहुत सारे बीमारी है, जैसे कैंसर या बहुत सारे होता है, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो हम लोग को इसी इसके लिए मतलब अभी से प्रिकॉशन तो ले मतलब शुरू हो गया है, लेकिन इसका साथ हम लोग को, कॉमन आदमी को भी इसका साथ मतलब बहुत इसको ध्यान में रख के हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए ज्यादा, या कुछ ग्लोबल वार्मिंग का जो जो जो है वो स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए।
0: You are absolutely right, अरिंदम जी। दोस्तों, आपने सुना अरिंदम जी की क्या कंसर्न्स है अगले 5 सालों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक गीत सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं।

0: बहुत खूब अरिंदम जी, अगर आप अपने बारे में एक बुक लिखें, किताब लिखें, तो उसका टाइटल क्या रखेंगे आप?
1: ये तो कभी सोचा नहीं कि मैं अपने बारे में लिखूंगा, लेकिन अगर मैं लिखूं तो मैं एक टाइटल, मेरा मतलब मैं जो दिमाग में आ रहा है वो है असंपूर्ण।
0: असंपूर्ण
1: असंपूर्ण इसलिए है कि देखिए, हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग का जो जीवन है, इसमें हम लोग का जो डिजायर्स है, हम लोग का जो मतलब हम लोग ये चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होता है। और ये हर एक स्टेज में हम लोग जो बचपन से बड़े होते जा रहे हैं, उम्र के साथ साथ हम लोग का जो एम्बिशन है वो भी चेंज होते जा रहा है, जो डिजायर्स है, तो हम लोग का, मुझे लगता है ये कभी खत्म नहीं हो। और कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि हम लोग का जो जीवन में हम लोग कभी कभी बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो वो अगर मुझे स्कोप मिले तो वो भी सुधारने का कोई मौका मिले, ऐसा कुछ हो, तो मतलब ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस अगर इसको ध्यान में रखते हुए मैं अगर कोई मेरा ऐसे ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो उसका नाम मैं असंपूर्ण ही रखूंगा, क्योंकि हम लोग का ये मतलब ये डिजायर्स नेवर एंडिंग होता है।
0: फैंटास्टिक, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, असंपूर्ण, बहुत ही प्यारी शीर्षक। तो दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बहुत सुंदर गीत। अरिंदम भाई, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: मेरा पसंदीदा रंग तो पीला, येलो कलर है, येलो।
0: ओके।
1: तो येलो मुझे पसंद है क्योंकि येलो वो जो है सूर्य का जो कलर है, मतलब जो ब्राइटनेस देता है, सनशाइन। तो वो मुझे लगता है कि वो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो येलो, मतलब मुझे वो ब्राइटनेस जो है, मतलब मेरा जो वहां जो उपस्थिति है वो मुझे प्रेजेंट करेगा। हाँ, जो सनशाइन है, जो ब्राइटनेस होता है, जो तो मेरा उसी के लिए मुझे येलो बहुत पसंद है, मतलब वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है
0: येलो कलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
1: और वो एनर्जी का जो इंडिकेशन है, मतलब हम लोग का काम ने, मतलब ये तो होता है, मतलब टायर्डनेस या कुछ रहने से नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, तो एनर्जी रहना जरूरी है। तो येलो कलर मुझे लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा देता है।
0: बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से कलर, येलो कलर अरिंदम जी को ताकत देता है, पावर देता है। तो चलिए गीत भी सुनते हैं, एक प्यारा सा अरिंदम जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। अरिंदम जी, अगला सवाल मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको। फर्ज कीजिए आपको किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ चाय कॉफी कुछ पीने का मौका मिल जाए, तो आप किसके साथ बैठना चाहेंगे, चाय कॉफी पीना चाहेंगे?
1: मुझे ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्वामी विवेकानंद बहुत, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं उनका, तो मैं उनका साथ बैठना चाहूंगा।
0: बहुत खूब,
1: क्योंकि उनका जो विल पावर है, उनका जो मेमोरी पावर था, वो तो मुझे लगता है मुझे उनको उनसे जानना चाहता हूं कि आपका ये जो विल पावर या मेमोरी जो कैपेसिटी है, ये आप कैसे कर लेते थे? इतना एक किताब में मैंने सुना था, वो पूरा इतना मोटा किताब पढ़ के पूरा याद रखते थे। तो ये स्वामी जी का जो है, और उनका जो मतलब बुराई का जो खिलाफ जो उन्होंने जो स्टेप लिया था, उनका जो शक्ति था, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब हीरोइज्म।
0: अमेजिंग, बड़ी प्यारी बात कही आपने। आप उनसे, विवेकानंद जी से मुलाकात करना चाहेंगे?
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे वो। तो दोस्तों चलिए फिर एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।

0: बहुत बहुत बढ़िया। अरिंदम जी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल। इमेजिन कीजिए कि अगर इंटरनेट, जिसके सहारे हमारी पूरी जिंदगी अब चल रही है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, फॉर एवर, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, फैमिली, रिलेशनल, तो क्या कहां कहां इंपैक्ट आएगा आपकी जिंदगी में?
1: हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, अगर इंटरनेट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे बंद हो जाएगा तो हम लोग का, मतलब जो कभी कभी ऑफिशियल वर्क में, मैं जो प्रोफेशन में हूँ, जो जॉब में, वहाँ तो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मेल आता रहता है या मैसेज आता रहता है, ये अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो मतलब ऑफिशियल जो वर्क होता है उसमें हैम्परिंग होगा। और उसमें हैम्परिंग होगा मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी जगह का कोई एक्सीडेंट हो गया और उसका मैसेज मुझे नहीं मिला, मतलब अगर कॉल में आएगा तो ठीक है, अगर हायर अथॉरिटी मुझे कॉल करके बताए कि यहाँ ये डिजास्टर हुआ है, आपको जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी डिटेल्स जो रहता है, कभी कभी वो इंटरनेट में आता है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन गैप होगा इसमें लगता है वो हैम्परिंग होगा।
0: ओके,
1: ये जो है, और मतलब ये नेगेटिव साइड मैं बोल रहा हूँ। और मतलब हम लोग का जो कभी कभी मोबाइल में हम लोग चैट करते हैं दोस्तों के साथ, वो बंद हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम लोग, मतलब वो रात 8 बजे से 10 बजे तक अगर हम लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में ही टाइम बिता लेते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो उसका जरिए से हम लोग का जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है उनका साथ मिलना जुलना सब बंद हो गया। तो ये हो सकता है कि अगर हम लोग वहां जाने के लिए स्कोप मिलेगा कि हाँ भाई, रात 8 बजे के बाद तो मैं फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारा घर आ जाऊंगा, मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप बहुत बढ़ेगा, मतलब ये एक दूसरे का साथ जो है पहले जैसा था वो ये आजकल बहुत जो कम होते जा रहा है, ये बहुत ये डेवलप होगा।
0: करेक्ट,
1: रिलेशनशिप में डेवलपमेंट आएगा। और एक चीज होगा कि इंटरनेट बंद, इंटरनेट से ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मूवीज वेब सीरीज में लोग देखते रहते हैं, तो सिनेमा हॉल जाना तो आदमी लोग कम करती हैं बहुत, तो मुझे लगता है 8 बजे से सवेरे 8 बजे एक ही शो होता है, नाइट शो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो टाइम मिलता है मूवीज देखने को रात में ही, ज्यादातर लोग मोबाइल में ओटीटी सीरीज में या वेब सीरीज देखते हैं, तो मुझे लगता है ये मतलब वो जो सिनेमा हॉल कल्चर था वो फिर से थोड़ा रिवाइव करेगा, मतलब आदमी लोग सिनेमा हॉल में जाना शुरू करेगा, कम से कम नाइट शो में, आफ्टर ऑफिस आवर्स और आफ्टर देयर वर्क विल बी फिनिश्ड, दे कैन रिलैक्स गोइंग इन द सिनेमा हॉल।
0: फैंटास्टिक, अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस। अरिंद भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने सुना कि इंटरनेट बंद होने से अरिंदम जी क्या सोचते हैं कि हमारे रिलेशंस पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर आएगा, आप भी सोचिए। और चलिए, तब तक एक बहुत खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं साथ साथ अरिंदम जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। अरिंदम जी, आप अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट पाना चाहेंगे? कोई ऐसा गिफ्ट है आपके दिमाग में कि बचपन से कि ये मिल जाता तो मजा आ जाता, क्या गिफ्ट?
1: मुझे आजकल तो ये कम हो गया है, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी भी कम हो रहा है, लेकिन मुझे अगर कोई गाने का ऑडियो सीडी या MP3 गिफ्ट करे और वो भी अगर कुछ उसमें कुछ रेयर सॉन्ग्स रहता तो मैं बहुत खुशी।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। देखिए दोस्तों, कितनी अमेजिंग बात बताई अरिंदम जी ने कि अगर उनको कोई रेयर सॉन्ग्स की MP3 कैसेट या CD दिए जाए तो उन्हें कितना। देखिए, इस गिफ्ट की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ये 5 रुपए में मिलेगा या 5,000 में मिलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज द यू नो वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोचिए, गिफ्ट को पैसे से मत तौलिए, उसकी जो भावनात्मक वैल्यू है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है, उससे उसको तौलिए। बहुत खूब, चलिए
1: एकदम
0: इसी तरीके का एक

0: अरिंदम जी, हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पे आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कोई संदेश दीजिए, बात कीजिए उनसे, टॉक टू देम।
1: आज मेरे जो सुनने वाले हैं मेरे प्रोग्राम, मैं सभी को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे ये मैसेज है कि आप लोग देखिए, हम लोग का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रेस है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मन को ताजा रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप लोग गाना सुनिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी म्यूजिक थेरेपी चालू हो गया है, बहुत दिन से ही हुआ है। तो हम लोग का यहाँ आप लोग अभी मुझे नहीं मालूम ऐसा कहाँ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम लोग का माइंड बहुत फ्रेश होता है, मन का जो शांति मिलता है। और मैं तो पर्सनली ये करता हूँ कि सारा दिन जो है वो रात में गाना सुनने से वो जो टायर्डनेस या स्ट्रेस सब दूर हो जाता है। गाना सुनिए, गाना मतलब गाना करने से भी होगा, अगर मैं जैसे सिंगिंग करता हूँ ऐसा, तो आप लोग गाना सुनिए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा गाना सुनिए, और आजकल रेयर सॉन्ग्स भी बहुत मिलता है, यूट्यूब में भी मिलेगा, वो रेयर सॉन्ग्स भी सुनिए। तो यही मेरा आप सबसे ये है कि आप गाना सुनिए और लाइफ को आनंद, लाइफ का जो आनंद है वो लीजिए, लाइफ को स्ट्रेस फ्री कीजिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा ही प्यारा संदेश दोस्तों, विचार करने वाला संदेश कि हमें किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। अरिंदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, इंटेलिजेंट मैसेजेस और बहुत प्यारे गाने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कमिंग इनटू माय प्रोग्राम। तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।
2: किसी से भी हारे नहीं हम।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

ईश्वर मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं।

इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प